जब लवली भाग मिलार तुझे तब लव भरते फिरते बहुत आयो कल खोर समुद्र में मूड दुखे कब हूं मिट है नीरे पछतायो तत् विचार यह मथुरा जगतार्न को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोर गर्भ धन गुरु नानक पातशाह धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पवित्र पावन नाम रसना से लिया है ने कोई संकट भी आएगा ते 84 लाख जून तू बच जाएगा तो प्यार नाल सारे आखो धन गुरु अर्जुन देव गंगा जी असी गुरु की संगतां दे सेवादार पातशाह हुक्म करो हलो कह लगे गंगा जी फिर कड़ा प्रसाद ही देख पिया पर कड़ा प्रसाद ही देख उस आटे भी नहीं बना अज गुरु की संगता की सेवा करनी है अपने हथी पहला चक्की पी दैवी गुणा वाली मां जगत माता माता गंगा जी अज गुरु की संगतां वास्ते आप चक्की पी आटा तैयार किया फिर साहबां ने अपने हथी कड़ा प्रसाद की अमृत देग तैयार सोने थाल विच पाई उत्ते चिट्टा रुमाल पाया माता गंगा जी कह लगे पातशाह किसे सिख नूं बुलाइए हजूर कह लगे नहीं गंगा जी असी आप ही अपने सिर पे सन्ने पातशाह जी कड़ा प्रसाद दी दे अपने पवित्र पावन शीश ते रख चादर दी हुकम मारी तुरन लगे माता गंगा जी कह लगे पातशाह मैनू की हुक्म है हजूर कह लगे गंगा जी जे संतां की सेवा करनी है तुसी भी ठंडे जल की गागर कर जिथे संगत नूं भुख लगी उसे प्यास तो मात गंगा जी ने सिर दे उत्ते गागर जल की रख ली हजूर तुरन लगे कह लगे गंगा जी पखा भी नाल लै लो गर्मी बड़ी तुरिया जाते अज पंजवा गुरु नानक सुरती नाम सारे करो दर्शन से प्यार नाल ती रखो धन गुरु रात दसो गुरु तुरिया जाता है सिखा ने दर्शन करो नदी तो रोज तुरदी है समुद्र को मिलने वास्ते पर समुद्र कदे नहीं मिलता समुद्र कदे नहीं आता पर तक लो प्यारी सात सिंह नदी रूप सिखी जे गुरु के दर्शनों में तुर पैंदी है जे कोई रुकावट पै जाती है तो गुरु आप ना उतर दे अद्धी रात दस गंगा जी सुना ना मेरी सिखा दे प्यार वाली आवाज भावें उन्होंने प्रशादा नहीं दे ठंडा जल किसी ने नहीं पिलाया पर फिर भी गुरु की संगत प्यार किस तरह अरदास कर गंगा जी सुनो साहबा ने बरसित की माता गंगा जी कन्ना में प्यार की आवाज आ रही है केड़ी सारी संगत रात का समय प्यार इजरी है ते अरदास कर रही है मेरा

दादा ने अपने प्यार दी मिसाल कितनी सुंदर। ऐ मेरे दाता जी दिल करे चातक की त्रिखा न उतरे सांस न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो औको लीजिए गोद कुमारी गुरु दर्शन। मैं गंगा जी कहता एडे प्यार वाले तेरे सिख हां गंगा जी आओ चल के छेती दर्शन। अगे गुरु की संगत कीर्तन करके ते हुण आराम कर रही साहब जी पहुंचे जथेदार नूं बेनती की जथेदार जी धन गुरु नानक दीआं संतां वास्ते कड़ा प्रशादी दे। जथेदार जी उठ के बैठ के सारी संगत नूं सावधान कीता प्यारी सार संगत उठो कोई गुरसिख आया है गुरु ने उन्हें मन प्रेरिया है लंगर का प्रबंध नहीं हो सकिया कड़ा प्रसाद दी दे जा रही है उठो पहले अरदास कर सिख जो भी गुरु वालों दास मिलती है ना पहला अरदास कर ये अरदास करे तो वो गुरु की बख्शिश बन जाती है क्योंकि गुरु की मोहर लग जाती है कार्य प्रसादा तैयार हो अरदास करो गुरु का लंगर बन जाए क्योंकि अरदास की हुई कोई कार्य नहीं गुरुओं की नहीं कोई वस्तु मिली चंगी कार मिली है पैदा गुरुओं की अच्छा तेरी चंगा कार मिले जय प्रसाद दसा सुख मंदिर इसे प्याए सारी सावधान जथेदार ने गंज पला पा के अरदास की ऐ धन गुरु नानक पातशाह तेरा प्रेमी सिकड़ा प्रसादी देख ले के आया है सिख नू नाम दान बख्शी सिख नू सिखी दान बख्शी। अजू कह लगे गंगा जी सेवा का फल मिल गया जी अज से प्रेमी सिख बन गए गंगा का सेवा का फल मिल साहबा ने अपने हथी सारी संगत को कड़ा प्रसाद चंगा जी हम जल भी किया साहबा के सोहने हथा जिन्हें जिन्हें प्रसाद लिया उन्हें ही जपया श्री वाह जल छकाया जूठे भांडे कौन मांज रहा है माता गंगा जी वो हथ पवित्र जो गुरु घर की सेवा जो गुरु घर की सेवा तू मांजे हैं भाई साहब जी लिखते फिर सेवा बिन हथ पैर होर मेहर कर दी सारे जल सकिया भुख भी दूर ते प्यास भी दूर और संगत आराम कर रही है ते तर गुरु अर्जन देव पातशाह जी लैके पक्का ये सारी संगत नु पक्का कर पक्का कर दिया प्यार क्या कि

भगवान चाहिए तो मुझे खा नहीं तुम्हें सदगुरु आप समझ जिर के चौदह रसड़े प्यारे कंतना के पास सूरतना की जे मिले जी कहो नानक की बाबा पिताजी पहुंच गए जाके साहबा जी उसको जोड़ा ले ले रो के क्या नीचा रूज करने वाले पत्ता नु पावन करने वाले तू भी नहीं कॉपी यार सोने सुख तू भी छोड़ दो पाचार इतने बैठे हो जोड़े पे चार ले हजूर कहने लगे बाबा तो इन्होंने नेत्रा नाल धन गुरु नानक के दर्शन किए जरा बीज ला के वेखे जोड़ा किसा है मेरे बीज ला के तकिया सचमुच जो जोड़ा मेरे धन गुरु नानक पास संगत हर प्रभु गुरु कितने रेंदे नेत्रा चाहे हिरदे से बैठा प्यारी सात गुरु की बख्शिश द्वारा जो गुरु नानक ने पाख्या तो आप इतने सुन संगत वाल वेखो इस वे संगत ने तकिया उपा मार के रोई जाए के पुल की जेदे को गुनाह पुछाने सन और जोड़े जेदे को जीत आ लेना सी बाबे ने कहा पातशाह करो कृपा से हजूर उठे श्री हरिमंदर साहब जी के अंदर आके विराजमान होए हरिमंदर साहब जी का ध्यान करके प्यारे सतनाम संगत दी नजर नहीं तरप तरप हटू जा रहे गुरु ने तख्सीस की थी ते क्या प्यारी साध संगत रोवो न पातशाह एडा वड्डा पाप कर बैठे हजूर कह लगे नहीं जब तुम इतनी खेचला की अभी कह लगे थोड़े प्यार के उत्ते प्यार की ज्योति प्यारे दे दीदार नक्श लाओ अभी कह लगे पहला पंक्ति पढ़ो जी रस्ते पड़ी दर्शन प्यासी फिर स्वराज जितना वर्दी नींद संगत ने फिर घर के पड़े आ अगली पंक्ति पढ़न लगे अभी कह लगे ठहर अगली पंक्ति तय खोल कपट गुर मेले आ नानक हर संगीत आओ फिर थोड़े पहला मन के किवाड़ तक होनी है मन के किवाड़ दरवाजे जे पूरा गुरु ही खोल दर्शन दीजिए खोल किवाड़ ओ किवाड़ मालिक खोल जिसे बख्शिश कर इसे महापुरुष ने लिखे मुर्शद ने जद बूहा लाया मुर्शद लो मुर्शद ने जद बूहा लाया अंदर जाती

आप जी विसाखी का पुरब मना रहे हो, कलगीधर पातशाह जी ने खालसा पंथ की अज साधना की सी विसाखी वाले दिन, ते शब्द भी उन्हां दा ही है कलगीधर पातशाह जी का। दोवें शब्द राग विच दास पढ़ेगा, ये दोवें शब्द कलगीधर पातशाह जी दे ने। पहला शब्द जो मैं पढ़ के सुना देवा, क्योंकि आप जी नूं कई बार समझ नहीं आवेगी, कई तुका दी अस्थाई दी तुक है। दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है, कि गुणन को पहार है। अकाल उस्तत, ओ वाहिगुरु गरीबां दा मालक है, दीनन को दाता है, ते दुष्टां दा ओ नाश करदा है, ते अपने सेवकां संतां दी ओ रक्षा करदा है, ते ओ गुणां दा पहाड़ है। पहाड़ मतलब दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है, गुणन को पहार है। तेज हूं को तर है, के राजसी को सर है, के

एकता की बाण है कि बुद्ध को उधार है, सुंदर स्वरूप है के भूपन के भूप है, के रूपों के रूप है के कुमत को प्रहार है। ये शब्द रीत जो राग दास शुरू कर रहा है, राग है भटियार। भटियार भी दो तीन तरह गाया जाता है, बिलावल ठाट नाल, मारव ठाट नाल, ते अस्थाई है यदि दस मात्रा छपता। उस तो बाद इसे ही बारह मात्रा विच करके दास ने गाना है। सब तो पहला दस मात्रा झपता, दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है के गुणन को पहार है। आप जी श्रवण करो। उस तो बाद जो अगला राग होएगा वो होएगा समेदा राग शुद्ध सारंग। मेरी अभय बिनती सुन लीजे, हे रव हे सस हे कर नानिद, मेरी अभय बिनती सुन लीजे। दूजा शब्द रीत राग जेड़ा शुद्ध सारंग विच तीन ताल विच होवेगा, पहला जपताल ते इकताले विच आप जी श्रवण करो।

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद माणिया है। असि आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हाँ कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चों नाल गलबात पंजाबी विच करते हो तो आप धनता जो हो जे कुछ कसर है तो अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चों पास पंजाबी विच गलबात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल तां इह समा उहनां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकणगे तां गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना तां इक पासे रहा, ओह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकणगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकणगे? हो सकदा है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असीं तां उस चाहते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उनताई है तां ध्यान दिओ ते ओह पूरी करो। आप जितनियां वध तों वध जवानां बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तां सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टैप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असीं तां अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया तां मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटार हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सगना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सज्जना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नूं सचेत करो। अगों दाते दा अपना काम है, आप ही सहाई होएगा। फिर लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

दृष्ट दर्शनी शब्द सुरत ही बुद्ध बल ही सुतो हस्त न पावली चित्रहीन फिरतहीन भार पवन को प्राण पत मिलो मेरी माई रूप ही बुद्ध बल ही।

말하니 저 상급이지 않았나 해 오라지 그들이 배기 저 수고 프라브 고빈드키 세와 소 수고 라지 나리 फिर प्यारी सास संगत राणे राणी दे उद्दम नाल फिर राजा सत्संगी बन गए। स्त्री नु वाहिगुरु ने बड़ा बल दिता है। कई तो इन कहते अबला है पर मैं तो कहना आदमी नालों स्त्री ज्यादा ताकत ज्यादा बल है। तुसी तक लो ना स्त्री दो काराबाद कर दी है। स्त्री जो है ए दो कर अपने पिता दा कर भी आबाद कर दी है ते अपने सहुरियां दा कर आदमी इको कर ही आबाद करता है अगो जरी ए विचार दी बात है। फिर एदे अंदर बल ज्यादा होया ना ताई बाबे ने स्त्री नु बड़ा मान बख्श स्त्री दे हाथ विच सब कुछ है। ए पति नु जैसा चाहे बना सकदी एदे अंदर ताकत थोड़ा जिहा तहमल चाहिदा थोड़ी जी विचार चाहिदी है थोड़ा जिहा सत्कार चाहिदा है तलखी विच नहीं आना चाहिदा। जे पति गलती करदा प्यार नाल समझाणा समझदे आ समझिया तां पशु ही समझ जांदे ना आखो श्री भाई सुणदे आ सुणदे इंसान है। तो मेरे कहण दा मकसद स्त्री दे अंदर वाहिगुरु ने बड़ा बल रखे। तक लो राणी तारा ने अपने सत्संग दे शक्ति दे नाल राजे हरिश्चंद्र नू सत्संगी बनाया। सत्संगी नहीं बनाया राजे नू धर्मी बनाया। राजा हरिश्चंद्र बड़ा धर्मी राजा है। और ए वस्तु कितों मिली प्यारी सात संगत ए सत्संग विचों मिली नाम विचों मिली। तो आओ प्यारी सात संगत आप भी धन हो जो ओ सत्संग आप सारे जुड़े हो। अज मैं तो यह समझदा भी सारा दिन ही तुसी सत्संग की अमृत वेले तो लैके अज सारा दिन ही वह ए है गुरु की बख्शिश ते तुहाडा प्यार जिस प्यार दे बूटे नू मालिक ने मेरा दे फल लाए। अमृत वेले भी कीर्तन गुरुद्वारे भी कीर्तन इधर सार तारा सिंह जी मच्छी जी तो सारे परिवार नू बाबा जी ने प्रेरिया भी घर सत्संग होना चाहिए कीर्तन हो जाए बड़ा महत्व है। जिस घर विच गंदे जरासीम हो जाए ना ज्यादा तो बीमारी पैण का खतरा हो जाता है। फिर असि की करते हैं DDT छिड़कते हैं ता जो जरासीम मर जाते बीमारी तो बच जाते हैं। ते जिस घर च दुख कलेश आ जान बाबा जी बचन करदे सन उथे कीर्तन हो गया खो श्री वाहेगुरु बाणी दा अमृत छिड़को नाम रूपी अमृत छिड़कोगे तां फिर की होवेगा नस वंजो किल विखो करता था। जिथे गुरु आ जाए तो इन्हां बच्चियां ने बड़ा उद्यम कीता बड़ी गुरु दी मेहर यंग हंदों में पर मैं तो कहूंगा जवानी सफल नहीं तो जवानी मस्तानी।

जगत दे उधार लई साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने खसम की बाणी नू रागात्मक संगीत पत्ती गुरमत संगीत नाल गाविया अते शब्द कीर्तन दी प्रथा चलाई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी समूह बाणी वख वख रागां ते राग प्रकारां विच निबद्ध कीती गई है। राग गौड़ी अते इस दे विभिन्न प्रकार विश्व संगीत विच अपनी पहली अदुती ते नवेकली मिसाल हन। राग गौड़ी संबंधी गुरु अमरदास जी दा फरमान है, गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करे भाणै चलै सतगुरु कै ऐसा सिगार करे। विस्माद नाद वल्लों मुख राग गौड़ी अते उस दे 11 प्रकारां विच शब्द कीर्तन दे 3 आडियो कैसेट्स आप सब दी सेवा विच भेट हन। राग गौड़ी भैरव अंग विच ऋषभ धैवत कोमल अते बाकी सुर शुद्ध लगदे हन। इस राग दे आरोह विच धैवत वर्जित है। इस राग दी जाति शाड़व संपूर्ण, समा रात दा पहला पैर वादी ऋषभ अते संवादी पंचम है। इस राग विच साधो मन का मान त्यागो शब्द दा गायन कर रहे हन प्रिंसिपल शमशेर सिंह क्रीर।

क्यों ना हो, दुई गुर साजे का सन रिठो चाओ, दाता करता तू तु तुस्ते वे करे पसाओ, तू जानो ही सबसे दिल ऐसे जिंद को कार्यासन रिठो चाओ।

0: जो सास गिरास त्याए मेरा हर हर सोपुर सिख गुरु मन पावे
1: जिसनु दयाल होए मेरा स्वामी
0: तिस गुर सिख गुर उपदेश सुनाए तिस गुर सिख गुर उपदेश सुनाए
1: जन नानक तू मंगे तिस

राग गौड़ी बैरागण विच ऋषभ धैवत कोमल दोवें निषाद अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस राग विच गंधार ते पंचम वर्जित हैं। इस दी जाति औड़व वादी ऋषभ संवादी धैवत अते समा सवेर दा है। मैं बंजारन राम की शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।

राग गौड़ी माला विच ऋषभ गंधार धैवत सुर कोमल अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दी जाति संपूर्ण वादी धैवत संवादी ऋषभ अते समा राग दा पहला पैर है। इस राग विच पाया लाल रतन मन पाया शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।

जेवा एक पार ना ले ही। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुद। शेष रसन सारस सी बुद्ध

मैं झूठ नहीं कह रहा, एक जरा पर भी, एक छिन पर भी इहदे विच मैं झूठ नहीं कह रहा। सौंख खा के कहना, या मैं रंच ना मिथिया पाखी पार।